अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

गर्जनम भवबीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् गर्जनम् यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमारथी भेष धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज के। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदाब, सुप्रभात। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप एवं प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। और इस विशेष प्रसारण द्वारा हम आकाशवाणी के द्वारा आप सभी बाबा के भक्तों का हार्दिक स्वागत कर

करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपकी सुखद यात्रा की प्रार्थना करते हुए आज की इस सभा का आरंभ करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज के इस विशेष प्रसारण में मैं आपकी साथी उद्घोषक साथ रहूंगी सायका सलीम।

जी श्रोताओं, बने हुए आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के साथ, और आप हमें सुन पा रहे हैं FM बालताल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आप हमें DTH पर भी सुन पा रहे हैं और आराधना चैनल पर भी जो है हम उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ आप हमें OTT के प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन पा रहे हैं। और श्रोताओं, आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे एकमात्र जो हमारा मोबाइल नंबर है उसके ज़रिए आप

श्रोताओं बने हुए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंदू समुदाय के लिए बहुत खुशी और उत्सव का समय होता है। तीर्थयात्री बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही आशा, बहुत ही नवीनकरण की भावना के साथ स्वामी श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हाजिर होते हैं और शांति और संतुष्टि की भावना के साथ बाबा के दर्शन करते हैं और फिर ये दर्शन पाकर प्रसन्न होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने क्षेत्रों की ओर लौटते हैं। श्रोताओं, ये एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कठिन अवश्य है, लेकिन एक ऐसी यात्रा भी है जो अर्थ और महत्व से भरी पड़ी है।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में और शिक्षण की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, यही हमारा प्रयास रहता है। और इस सिलसिले में हम एक क्रम में हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं और यात्रा से जुड़ी हर जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। और इस वक्त फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रथम आधार शिविर भगवती नगर से जावेद मेहराब। जी जावेद साहब, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास यात्रा की और क्या संख्या रही आज श्रद्धालुओं की, बाबा के भक्तों की, जिनको आज घाटी की ओर प्रस्थान कराया गया?
1: संख्या बताने से पहले मैं बताऊं आपको कि पवित्र श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा एक तीर्थयात्री जो है एक सप्ताह के खराब मौसम के इंतजार के बाद यहाँ कल खुली धूप के मौसम का आनंद और ट्रांजिट कैंप से बाहर बाजारों और धार्मिक स्थलों स्थानीय प्रथम मंदिरों में नजर आ रहे थे। तो कल पूरे दिन धूप में स्थानीय लोगों ने भी पतले मौसम के बाद राहत की सांस ली। इस दौरान यहाँ की नदियां भी अब अपने उनका जो जल स्तर है वो डेंजर मार्क से नीचे हो गया है, तो उसकी वजह से एक जो बेहतर वातावरण बन चुका है दोबारा शहर में, वो एक अच्छी बात है। इसी दौरान यहाँ भगवती नगर निवास स्थान से भी श्रद्धालुओं के जो जत्थे हैं पिछले दो दिनों से बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ बालटाल मार्ग की तरफ रवाना हो रहे हैं और लगभग 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद हजारों तीर्थ यात्री दोबारा बाबा बर्फानी के दर्शन की और उसी जोश जज्बे और आस्था के साथ रवाना हो रहे हैं। हालांकि लगातार मौसम खराब होने के दरमियान भी यहाँ तीर्थ यात्रा शुरू भी की गई और इस दौरान कई कई बारिशें भी थी और जो राष्ट्रीय राजमार्ग था कई बार बंद होने की खबरें भी आई, भूस्खलन की खबरें भी आई, लेकिन उसके बावजूद जो कर्मचारी है जो यहाँ इस पूरी तीर्थ यात्रा को मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं और इस बीच सभी ने मिलकर दोबारा इस तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया है, जो एक अच्छी खबर है। और इस दौरान तीर्थ यात्री भी सावन के इस महीने में तीर्थ यात्रा पर रवाना होने से न सिर्फ खुश नजर आ रहे हैं बल्कि उसी आस्था और जज्बे जोश जज्बे का भी वो माहौल है।
0: जी जी।
1: तो लगातार तीर्थ यात्रा निवास स्थान भगवती नगर में तीर्थ यात्रियों की तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि यहीं से पिछले दो दिनों से हजारों तीर्थ यात्री भी घाटी की ओर रवाना हो रहे हैं और इस बीच यहाँ जैसे ही तीर्थ यात्रियों के काफिले रवाना होते हैं वैसे ही यहाँ निवास स्थान भगवती नगर में फिर से दोबारा इस निवास स्थान में श्रद्धालुओं का जो रश है दोबारा लौट आता है, क्योंकि तमाम ट्रांजिट कैंप से जो तीर्थ यात्री है उन्हें जो यहाँ पहुंचाया जाता है और यहीं से यात्रा रवाना होती है, तो उस श्रद्धालु में वही जोश और जज्बा और आस्था और विश्वास तीर्थ यात्रा में आज भी जारी है और यात्रा इस वर्ष रिकॉर्ड अभी तक लगभग 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर लिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि भगवान शिव की असीम कृपा से रविवार तक 4,14,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के पवित्र यात्रा पूरी कर ली है। तो आंकड़ा पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए भी तैयार है क्योंकि इस वर्ष जो ये यात्रा है 28 अगस्त को इसका समापन होगा।
0: जी जी।
1: तो अभी पूरा लगभग समझ ले आपके 1 महीने से ज्यादा समय है।
0: जी।
1: तो अभी तक वर्ष जो अगर हम पिछली यात्राओं की बात करें तो वर्ष 2025 में 4 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने अपनी यात्रा पूरी की, वही 2024 में 5,12,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। तो तीर्थ यात्रा लगातार चल रही है और उसी जोश जज्बे के साथ चल रही है और लग रहा है कि इस बार यात्रा जो है वो सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो तीर्थ यात्रा के इस सफर में सख्त सुरक्षा घेरे में घाटी की ओर रवाना होती है। इस इस बीच संवेदनशील इलाकों और पहाड़ी मोड़ों पर अतिरिक्त बल तैनात भी किए गए हैं। मंडल आयुक्त रवीश कुमार के मुताबिक बालताल मार्ग की ढलान और दुर्गम रास्तों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरे रूट पर राहत दल, एम्बुलेंस, मेडिकल कैंप्स और उसके साथ साथ जो मैं कल भी कह रहा था MRT माउंटेन रेस्क्यू जो टीमें हैं
0: जी जी
1: वो लगा रखी हैं। वहीं मार्ग में श्रद्धालुओं के खाने पीने और विश्राम की भी पुख्ता इंतजाम है। आज की जैसे आपने बात की कि कितने निवास स्थान भगवती नगर से रवाना होने वाले
0: जी
1: श्रद्धालुओं की कुल संख्या लगभग आज भी 3,823 रही, जिसमें पुरुष 2,882, महिलाएं 835, बच्चे 2, साधु 84 और साधवी 17 शामिल हैं। 140 वाहनों का ये काफिला
0: जी
1: घाटी
0: जी
1: की ओर सुबह तड़के बालताल के मार्ग की तरफ अग्रसर है और जोश जज्बे के साथ सुरक्षा कवच में यात्रा आगे बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर जो है यात्रा का जो ये पर्व है यहाँ जम्मू में सावन के इस महीने में बिल्कुल बहुत अच्छे माहौल में और बहुत उत्साह के माहौल में दोबारा शुरू हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 28 से लेकर 30 तक जो मौसम है एक बार फिर खराब होने की स्थिति बनी हुई है,
0: जी
1: लेकिन कल की धूप रही और आज भी मौसम अभी बिल्कुल खुला हुआ है। तो सभी कुदरत की इस व्यवस्थाओं के बीच और जो मौसम है उस पर ही ये निर्भर होता है सारा कि किस तरह की मौसम करवट लेगा, लेकिन अभी तक बिल्कुल विश्वास और बहुत हर्षोल्लास के साथ ही

0: आगे बढ़ रही है।
1: तो हम तो यही कहेंगे कि मौसम तो बदलता रहता है, लेकिन और ये तो श्रावण का महीना है और इसमें तो मौसम में बदलाव तो है, ये एक आम सी बात है, लेकिन फिर भी ये यात्रा का वातावरण जो है अब फिर से सुखद तरीके से वापस शुरू हो चुका है और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। और साथ साथ जो भी खबरें भी जो और नए अपडेट्स भी जो आते हैं वो यात्रा के लिए हमेशा पॉजिटिव जो ही रहे हैं, क्योंकि जो भी चाहे चाहे प्रशासन की तरफ से है, कर्मचारियों की तरफ से है, समीक्षा बैठकें हैं, मतलब ये सारी जो अभी तक की अपडेट्स हैं वो सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पॉजिटिव ही रही हैं। उसमें उन खबरों ने भी तीर्थ यात्रियों के जो जज्बे को बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभाया है। और तभी क्योंकि सारी जब मौसम और उसके बावजूद भी तीर्थ यात्रियों ने अपना जोश जज्बा कायम रखा है, स्थगित भी रही थी यात्रा 6 दिन, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो तीर्थ यात्री वो लगातार बाबा बर्फानी की इस आस्था को बनाए रखे हुए थे। और तभी यात्रा बराबर जैसे ही शुरू हुई तो उसी जोश जज्बे के साथ शुरू हुई।
1: जी वही वही उत्साह फिर से देखा जा रहा है।
0: बिल्कुल
1: जावेद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विवरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे भगवती प्रथम आधारश्वर भगवती नगर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता जावेद मेहराब, जिन्होंने बताया कि वातावरण जो है फिर से सुखद हो चुका है क्योंकि यात्रा कुछ दिनों तक जो है स्थगित रही मौसम में बदलाव की वजह से, लेकिन अब फिर से ये यात्रा जो है उसी उत्साह के साथ चल पड़ी है। बने रहिए क्षण क्षण की जानकारी के लिए FM बालतल 103.7 MHz और FM पहलगाम 100.1 MHz के साथ।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं और यात्रा से हर संभव जानकारी जो है आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास हमारा रहता है। और इस वक्त हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन रामबन से फ़ोन लाइन के माध्यम से। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ स्थिति है इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की। जी तस्कीन साहब
1: जी, शुक्रिया। जैसा कि आपका मालूम है कि आज 20वें काफले में श्री अमरनाथ यात्रा जो पिछले कई रोज से शुरू करने के बाद सिर्फ बालतल से चलाई जा रही है, 140 गाड़ियों में 3,830 यात्रियों को लेकर इस वक्त ये यात्रा रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है। और अगर कहेंगे तो अभी तक भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से 1,27,326 यात्री मतलब कश्मीर की तरफ रवाना किए गए हैं दोनों मार्गों से। और कुल मिलाकर जो अभी तक जम्मू बेस कैंप से कहेंगे कश्मीर की तरफ ये 1,27,326 यात्री अब तक पहुंच चुके हैं, जबकि जो सरकारी इदादोशुमार है उनके मुताबिक अब तक 4 लाख से जायद श्री अमरनाथ यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन भी कर लिए हैं। इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है इसमें रात करीबन 12:30 एक स्लाइडिंग हुई है 1 बजे के करीब यहाँ देवल उधमपुर के इलाके में, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी बंद है। वहां देवल के पास शाहरा का एक ट्यूब को जो पहले नुकसान पहुंचा और एक ही ट्यूब से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, और उस पर गलस्ता रात भी परसों भी स्लाइड हुई थी, कल भी हुई थी, तो उसमें आज रात भी फिर स्लाइडिंग हुई और ट्रैफिक पुलिस ने वहां पर जो एडवाइजरी एक जारी की है रात के करीबन 2-2.5 बजे के आसपास, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो सफर शाहरा पर न करें। अलबत्ता जो श्री अमरनाथ यात्रा है इसे निकाला गया है, ट्रैफिक को उसके लिए क्लियर किया गया है, और ये श्री अमरनाथ यात्रा इस जो उधमपुर की स्लाइड है देवल के पुल के पास, तो वहां पर इसे क्रॉस करके ये इस वक्त जो श्री अमरनाथ यात्रा है रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस ने बाकी जो आम ट्रैफिक है, सिविल ट्रैफिक है, उसको हिदायत जारी की है कि वो अवॉइड करें आज शाहरा पर सफर करने से गुरेज करें, तब तक सफर ना करें जब तक शाहरा को बिल्कुल महफूज और सफर को बिल्कुल आसान नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर काम चल रहा है और ट्रैफिक पुलिस जो हेडक्वार्टर्स है उनकी तरफ से जो एडवाइजरी जारी है उसमें यह भी कहा गया है कि वहां पर मजीद स्लाइडिंग का चांस है, क्योंकि वहां पर बहुत मलबा और गारा ऊपर से आ रहा है जो हाईवे को अपने लपेट में ले रहा है, और वहां पर ट्रैफिक को क्लियर जो है बड़ी मुश्किल से हो रहा है। याद रहे कि कल जो कहेंगे हम करीबन 12 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा था हाईवे पर, और कल शाम को ट्रैफिक को जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसे रिलीज किया गया था। अलबत्ता श्री अमरनाथ यात्रा कल सुबह बगैर किसी मुश्किल के निकाली गई थी। उसके बाद जो डबलिंग का काम था, हाईवे को कुशादा करने का काम था, जो स्लाइडिंग की वजह से पिछले 3-4 रोज जो हाईवे बंद रहा उसी वजह से स्लाइडिंग से बहुत डैमेज हुआ। कुछ जगहों पर जहाँ पत्थर गिर आए थे, बड़े बड़े बोल्डर गिरा, उनको ब्लास्ट करने के लिए, ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक है, उसके लिए इसे कल बंद किया गया था, और कल शाम ही इसे ट्रैफिक को बहाल किया गया था। इस दौरान जो ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल रूम है कश्मीर जोन का, उनके मुताबिक जो आज श्री अमरनाथ यात्रा का 19वां बैच जो है वापस आज आ रहा है बालतल से जम्मू की तरफ, और ये ट्रैफिक जो सुबह निकाला गया है वहां से बालतल के बेस कैंप से 19वें बेच में, तो वो इस वक्त यहाँ बानहाल की तरफ बढ़ रहा है। अभी कुछ वक्त के बाद ये बानहाल पहुंचेगा जहाँ पर इनको ब्रेकफास्ट वगैरह का इंतजाम रखा गया है। जो बालतल से यात्री बालतल के लिए यात्री आ रहे हैं जम्मू से, तो उनका भी बानहाल में ही रोका जाएगा, उन्हें रामबन में रोका नहीं जाएगा। जबकि पहलगाम की यात्रा पिछले जब शुरू हुई है, ये 2 दिन से तीसरा दिन है आज, तो अभी तक पहलगाम की यात्रा को शुरू नहीं किया गया है। फिलहाल जो मौसम है बिल्कुल खुशगवार है, धूप निकली हुई है, और अगर कहेंगे तो पिछले 6-7 दिन के बाद कल और आज धूप है, और इस वक्त भी धूप चमक रही है, और उम्मीद है कि मौसम बिल्कुल ऐसे ही खुशगवार रहेगा और श्री अमरनाथ यात्रा के दोनों काफले अपने बनी मंजिलों को पहुंच जाएंगे।
0: जी यहाँ पर ये आपसे कहना चाहेंगे कि आप ने जैसा कि कहा कि भूस्खलन हो गई है, लेकिन इसकी वजह से भी हमारी यात्रा जो है इसमें कोई बाधा नहीं है, हमारी यात्रा जो है बिल्कुल बाधा के बगैर, किसी भी बाधा के बगैर आगे जा रही है।
1: बिल्कुल, कल भी जैसे हाईवे बंद था लेकिन फिर 12 घंटे बंद रहा, लेकिन श्री अमरनाथ यात्रा को निकाला गया था एक ट्यूब से, क्योंकि अब श्री अमरनाथ यात्रा का अब लिमिटेड ट्रैफिक होता है। जैसे बालता से कश्मीर की तरफ 140 गाड़ियां जा रही है, और इसी तरह बेच 19 में जो वापस बालता से जम्मू की तरफ ट्रैफिक आ रहा वो 129 गाड़ियां है, इनको निकाला जाएगा। और ट्रैफिक पुलिस हर वक्त ये कोशिश करती है ऐसा रिस्क न लिया जाए, अगर रोड तंग हो या वहां पर मतलब वन वे ट्रैफिक हो, जैसा है भी इस वक्त कई मुकामात पर हाईवे के खराबी की वजह से, तो
0: जी
1: ट्रैफिक पुलिस का यही कोशिश है कि जो हजारों की तैदाद में गाड़ियां फिर ट्रैफिक आना है उसे रोका जाए फिलहाल, ताकि जब तक क्लियरेंस न हो, ताकि बाद में जामिंग न हो, दिन भर फिर घंटों के हिसाब से जाम रहता है। और जो पैसेंजर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, अनरजिस्टर्ड यात्री होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल का बाइस बनता है। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने श्री अमरनाथ यात्रा को निकालने के बाद अभी जो जम्मू वाला बैच वहां उधमपुर से जहां भूस्खलन हुआ है वहां क्रॉस किया गया, इसको ये रामन

0: में पहुंच चुकी है, वो जो वापस यात्रा जा रही है बालतल से जम्मू की तरफ, तो उसे भी वहां पर पार कराया जाएगा। लेकिन बाकी ट्रैफिक के लिए एडवाइजरी है कि वो बिल्कुल रुके रहे, तब तक सफर न करें। फिलहाल जो आमतौर पर किया जाता है कि उधमपुर और काजीगुंड से आगे ट्रैफिक को बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और वैसा ही आज की जो एडवाइजरी रात के करीबन 2 बजे जारी की है ट्रैफिक पुलिस ने, 3 बजे करीबन गालिबन सुबह, तो उन्होंने उसमें ये लोगों से अपील की है कि वो शाहरा पर सफर न करें। अलबत्ता इसका यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वहां पर वैसा उतना ट्रैक बनाया गया है देवल के मुकाम पर उधमपुर में कि वहां पर यात्रा को आराम से निकाला गया, और जो वापस जाने वाले यात्रा है उसे भी बहफाजत निकाला जाएगा। अलबत्ता जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये बाकी ट्रैफिक पर रहेगी, तब तक रहेगी जब तक इसे क्लियरेंस नहीं की जाएगी, उसके बाद ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा।
1: जी मोहम्मद तस्कीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विवरण के लिए।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद तस्कीन रामबन से, जिन्होंने बताया कि इस वक्त जो यात्रा है बहुत ही अच्छे वातावरण में, सुखद वातावरण में आगे जा रही है। हालांकि बाकी जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है, लेकिन हमारे यात्री जो है उनको आगे बढ़ने की इजाज़त मिल गई है, और वो बहुत ही अच्छे, हम ये कहेंगे कि सामान्य माहौल में आगे बढ़ रहे हैं बाबा भोलेनाथ के नाम का सिमरन करते हुए।

श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के साथ आप जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। आप सुन रहे हैं, अगर बालताल के मार्ग से सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़। पहलगाम के मार्ग पर आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप हमें DTH पर भी सुन पा रहे हैं और आराधना चैनल पर भी, और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर भी, और साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी। श्रोताओ, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर 9596699054 9596990954 पर, और अपने अनुभव या इस प्रसारण से जुड़ी कोई सलाह सुझाव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अपने वॉइस नोट्स भी आप इस पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप के सुझाव जो है, आपकी बात जो है, हमारे लिए महत्व रखती है, हमारे लिए बहुत ही विशेष है।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में, और अब से बस कुछ ही समय में आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: घर खर्च के पैसे दो हजार।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
4: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव

0: सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
2: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
1: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट UG प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन Z का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है मीराबाई

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकणी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने रابطوں को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की माया नाज वेट लिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। ऋषि कांत सिंह ने मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल आज कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मसवदे को मंजूरी दी थी, ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्त तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सभी अरकान से अपील की है कि वो इम्तिहानात की इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहसे में हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि नौजवान नस्ल की आवाज़ सुनकर और तलबा के मुस्तकबिल के लिए वजीर आजम मोदी की तरफ से किए गए तारीखी फैसले के बाद वो सभी अरकान पार्लियामेंट से अपील करते हैं कि वो आज बहस मुबाहसे में हिस्सा लें। एक रिपोर्ट।
1: इस बिल में पेपर लीक के किसी भी केस से निपटने के लिए सख्त सजाओं पर मबनी शिकायत शामिल की गई हैं। इस बिल में 7 अहम तरामीम की गई हैं, जिनका मकसद कानून लागू करने में खामियों को दूर करना, खसूसी अदालती निज़ाम कायम करना और फौजदारी मुकदमात में तेजी लाना है। इस बिल में तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एक सख्त फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है, जिसका मकसद 2024 के फ्रेमवर्क में खातिरखा बेहतरी लाना है। रियासती सरकारों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इंतज़ामिया को, सेशन अदालतों को खसूसी टास्क फोर्स अदालतों के तौर पर नामजद करने के अख्तियारात दिए जाएंगे, जो मज़कूरा कानून के तहत जराइम के खिलाफ खास तौर पर कानूनी कार्रवाई अंजाम देंगी। बिल की शिकों के मुताबिक खसूसी टास्क फोर्स की अदालतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात की सुनवाई करेंगी, जिनके लिए लाजमी होगा कि वो फर्द जुर्म दाखिल किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला सुनाएं। न्यूज डेस्क से कौमुदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकणी की क्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे, ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहानात का निज़ाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डीका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनिता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तिहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाती इम्तिहानात की दयानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मजबूत बनाए। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से विकसित दरख्शां गांव पर प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। वजीर आजम ने मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क की तामीर में नौजवानों के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि जब नौजवान समाज की निचली सतह पर हकायक से वाबस्ता होते हैं तो सबकी शमूलियत वाली तरक्की की जानिब भारत के सफर को मुस्तहकम बनाते हैं।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
0: वजीर आजम ने विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के बारे में कहा कि ये कदम नौजवानों को तहरीक देने के लिए उठाया गया है ताकि वो मुल्क के सरहदी गांवों का दौरा करें, उन्हें समझें और इस सिलसिले में सरगर्म हों। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में नौजवानों ने जबरदस्त जोश व खरोश जाहिर किया और तकरीबन 3 लाख नौजवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनमें 400 से ज्यादा नौजवानों को मुंतखब किया गया है।
2: विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक दूरंदेश और रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने भारत को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और मजबूत भारत बनाने का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मुल्क की टेक्नोलॉजी से मिसाइल तैयार करने तक और भारत के खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को भारतीय साइंस की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। उन्होंने भारत के खलाई और मिसाइल के तरक्याती प्रोग्रामों में एक कलीदी रोल अदा किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका 2015 में आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मरकजी वजीर दाखिला

0: शाह ने डॉक्टर कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के खलाई और मिजाइल प्रोग्राम का मैमार बताया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यौम तासीस पर सभी फौजी एहलकारों, अफसरों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि CRPF मुल्क को बाइख्तियार बनाने और उसकी सलामती में मुसलसल सरगर्म अमल है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन हमलों का सिलसिला रोके रखा, जिससे तकरीबन दो हफ्ते से जारी फौजी कार्रवाई के बाद एक उबूरी जंगबंदी के बारे में ताज़ा मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप सिफारती कोशिशों का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हालिया हफ्तों में हर सतह पर बातचीत में सरगर्म रहे हैं। ईरानी फौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान से खित्ते में जवाबी हमले रोक दिए हैं और जब से अमेरिका ने अपनी कार्रवाई बंद की है पिछली दो रातों से कोई हमला नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में भी आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेट लिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद दो तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342105050 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी के क्याम का ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर वजीर आजम के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, खलाई शोबे में निजी शराकत दारों का मुस्बत नतीजा, पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफे पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, ट्रंप का अमरीकी फौज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म, दो हफ्तों से जारी जंग थम

0: वहां ईरान ने भी हमले रोके। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, प्रहलाद जोशी ने वजारत तालीम का चार्ज संभाला, मल्ला बहिरे अस्वद इलाके में काम करने से पहले खसूसी एहतियात बरतें, वजारत खारजा का बयान, गुजरात महाराष्ट्र और उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट।
1: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के असलाहत के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलेकानी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की मायानाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। इसी के साथ ये खबर।
2: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में बाबा के भक्तों का आप सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ये विशेष प्रसारण FM बालथल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। और इस विशेष प्रसारण में हम यात्रा से जुड़ी क्षण क्षण की जानकारी जो है आप तक पहुंचाते हैं। बने रहिए हमारे संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। और आपको बता दें श्रोताओं कि आज प्रातः भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से आधार शिविर से जो है 3823 बाबा के भक्तों को वादी की ओर घाटी की ओर जो प्रस्थान कराया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 2882, महिलाएं 838, बालक 2, साधु 84, साध्वी 17। और इस प्रकार से ये संख्या कुल मिलाकर 3823 बन जाती है, जिनको 140 वाहनों में, छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर प्रस्थान कराया गया। और हम यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है कि आपकी ये यात्रा जो है मंगलमय रहे, सुखद रहे, आरामदायक रहे और सफलता पूर्वक रहे। हम आशा करते हैं कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में आप शिवलिंग के दर्शन के बाद जो है आप पवित्रता हासिल करने में सक्षम रहें।

0: श्रोताओं, आप विशेष प्रसारण सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संबंध में, और इसमें हम यात्रा से जुड़ी पल पल की जानकारी जो है आप तक पहुंचाते हैं, यही हमारा प्रयास रहता है। और इसी संबंध में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से गांदरबल से रहीम रिजवान। तो जी रिजवान साहब, कैसी स्थिति है आज जो है बालताल के मार्ग पर?
1: आज बादल के पूरे क्षेत्र में मौसम की स्थिति खुशगवार बनी हुई है। सुबह सवेरे यहाँ ठंडी एवं ताजा हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं का आनंद लेते हुए यहाँ लंगरों में काम करने वाले सेवादार तथा उनके अधिकारी सुबह 3 बजे से बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा करने में जुट जाते हैं। उनके लिए भोजन वगैरह तैयार करके उन्हें दर्शन के लिए पवित्र गुफा की ओर रवाना कर रहे हैं। उन्हें यह आस्था है कि बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा करने से उन्हें मन को शांति मिलती है तथा वे बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाते हैं। वह बार बार सेवा के दौरान यह पवित्र नाद करते रहते हैं कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इस पवित्र नाद से सुबह सवेरे बालतल के पूरे क्षेत्र में न सिर्फ गूंज उठती है बल्कि यहाँ नया समय देखने को मिल रहा है। जब यात्री सुबह 3 बजे से ही दुमेल कंट्रोल गेट पर लंबी लंबी कतारों में पवित्र गुफा की ओर जाने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ऐसे वातावरण में आज प्रशासन ने 10,664 यात्रियों को बालतल मुख्य मार्ग से पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई। दुमेल कंट्रोल गेट से सुबह 4 बजे से अपना पवित्र सफर शुरू करने वाले इन श्रद्धालुओं में 7,188 पुरुष, 3,199 महिलाएं, 48 बालक बालिका, 53 साधु एवं 176 सुरक्षा कर्मी शामिल है। रंग बिरंगी रेनकोट में मुलबूस पद यात्रा करने वाले यात्री हाथों में लाठियां लेकर धीरे धीरे गुफा की तरफ निकल रहे हैं, जबकि डांडी एवं गोडू पर सवार होकर यात्री भी पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते रोज भी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु ने पवित्र गुफा जाकर माथा टेका तथा वे बाबा बर्फानी के दर्शन से प्राप्त हुए। बीती रात देर गए तक 18,439 यात्री दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल मुख्य मार्ग से दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल पहुंचने वाले इन श्रद्धालु में 12,088 पुरुष, 5,879 महिलाएं, 207 बालक बालिका, 51 साधु, 2 साध्या एवं 212 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। बालतल बेस कैंप में रात्रि विश्राम के बाद आज सवेरे मुख्तलिफ वाहनों में हजारों श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी गई। वह यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपना सफर जारी रखते हुए जम्मू की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। प्रशासन के द्वारा इस वर्ष यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर जहां उच्च रखी गई हैं, वहीं सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तथा उनकी यह तीर्थ यात्रा बिना किसी बाधा के सुखद तरीके पर संपूर्ण हो सके। जी
0: जी रिजवान साहब, आज जैसा कि आपने कहा कि मौसम जो है इस वक्त खुशगवार हो गया है, अच्छा सुहाना हो गया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे

0: यात्री जो है कितने प्रसन्न है इस मौसम से, क्योंकि मौसम में बदलाव आ चुका है।
1: मौसम में बदलाव आ चुका है और बड़ी मात्रा में यात्री जो हैं वो बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं। और यात्रियों में आज सुबह सवेरे रात के 2 बजे से ही इतना उनमें उत्साह पाई जाती है कि वो कब दुमेल कंट्रोल गेट पहुंचेंगे और अपनी कतारों में वहां रह के अपनी बारी का इंतजार करेंगे ताकि वो पवित्र गुफा की ओर रवाना होंगे। तो यहाँ का वातावरण देखकर आज लग रहा है कि मौसम जो है बिल्कुल सुहावना बना हुआ है और इसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो ताजा हवाओं का आनंद लेते हुए आज सुबह सवेरे जोशो जज्बे के साथ जो यात्रा है वो धार्मिक रूप से आज बालतल मुख्य मार्ग से जारी है। यात्रियों ने रेन कोट्स जैसे कि जिला प्रशासन ने बार बार उनको सूचना दी है कि वो प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें, तो उन्होंने लाठियां, रेन कोट्स, पानी की बोतलें और दीगर अन्य व्यवस्थाएं जो सामान है वो साथ रखा है और वो ऐसे हाथों में लेके बाबा बर्फानी के पवित्र नाद करते हुए पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं।
0: जी रिजवान साहब, इस विवरण के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी।
0: जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता गांधरबल से रहीम रिजवान, जिन्होंने बताया कि ऊंचे स्थल पर स्थित पहाड़ों की श्रृंखला माला के बीच स्थित बाबा बर्फानी जो है श्री अमरनाथ जी की यात्रा सफलता पूर्वक और सुरक्षा के बीचों बीच और सुखद तरह से संतुष्टि के साथ जारी है और बाबा बर्फानी के भक्तों के जयकारों से हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है गूंज रही है। बने रहिए क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हमारे संग।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा को पहलगाम के प्राचीन मार्ग से अभी जो है फिलहाल रोका गया है और यात्रा के इस मार्ग पर यानी कि प्राचीन पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर रखरखाव का काम मुख्य प्रकार से चल रहा है। अभी यात्रा सिर्फ बालताल के मार्ग से ही जा रही है और आपको बता दें कि अभी 8 बजे तक, आज सुबह 8 बजे तक 567 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 360, महिलाएं 150, बालक 10, साधु 5 और सुरक्षाकर्मी 42। यूँ कुल मिलाकर ये संख्या 567 हो रही है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि इस सुहाने से मौसम में, चूँकि मौसम जो है सुहाना हो चुका है, वहाँ इस सुहाने से मौसम में यात्रा शांतिपूर्ण तरह से, शांतिपूर्ण रूप से कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। और हमारी भी यही प्रार्थना है कि आपकी ये यात्रा सुखद रहे, सफल रहे।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और आपको बता दें कि आज प्रातः 3823 तीर्थयात्रियों को बाबा बर्फानी के हम ये कहेंगे कि यात्रा के लिए जो है आज प्रातः उनको रवाना किया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 2882, महिलाएं 838, बालक 2, साधु 84 और साध्वी 17, और यूं कुल मिलाकर ये संख्या 3823 बन जाती है, जिनको 140 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर जो है प्रस्थान कराया गया।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही समय में आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाचार सुनेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात में इस्लाहात लाने की गरज से मारूफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलखनी की सरबराही में एक आला सतह का टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। अपने एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात में इस्लाहात को यकीनी बनाने की तरफ तवज्जो मरकूज़ करेगा और इसके रिपोर्ट की बुनियाद पर लाजमी इकदाम किए जाएंगे ताकि आने वाले इम्तिहानात की एतबारियत को यकीनी बनाया जा सके।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: हुकूमत आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश कर रही है। यह बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऐवान में पेश कर रहे हैं, जिसका मकसद पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में तरमीम करना है। वाजिर है कि मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधलियों के मामलों में सख्त सजा दिलाने की गरज से फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने से मुतालिक मसविदा बिल को पिछले जुमा को मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 136वें शुमारे के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने खास तौर से करगिल विजय दिवस का जिक्र किया और इस जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों को खराज अकीदत अदा किया। वज़ीर आज़म ने वोकल फॉर लोकल जज्बे को तकवीत बख्शने पर जोर देते हुए कश्मीर में तैयार किए जाने वाले घास की चटाई वगो का जिक्र किया। उन्होंने कश्मीरी दस्तकार गुलाम हसन और उनकी बेटी तंजीला की सराहना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल तीरथराज लोक भवन अनंतनाग में हरबा त्यौहार के मौके पर माता सिद्धि लक्ष्मी मंदिर पर हाजिरी दी। इस मौके पर एलजी ने कहा कि ये पवित्र स्थापन सदियों से आपसी रवादारी और अकीदे का एक गहवारा रहा है और हमें ये याद दिलाता है कि असल ताकत रूहानी इख्तार और हमदर्दी के जज्बे में मुसमिर है। उन्होंने कहा कि हरबा त्यौहार अकीदत, शुक्रगुजारी और मन की शांति हासिल करने का एक अहम मौका है। हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर का एक वफद इसके सदर प्रोफेसर बीएल जुच्ची की क्यादत में लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ। दरियासा अमरीका में मुकीम एक गैर सरकारी तंजीम कश्मीर रा के बानी अरविंद मुत्तू ने भी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और तंजीम की तरफ से जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे को तहफ्फुज़ और फ़रोग देने के लिए किए जा रहे इकदाम के बारे में जानकारी दी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत अब तक 4 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है और ये यात्रा के लिए एक संगमेल माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि कल शाम तक मजमूई तौर पर 4,14,000 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए हैं। एलजी ने इस यात्रा को कामयाब बनाने में तमाम मुतल्लकीन का शुक्रिया अदा किया है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू ने खबर दी है कि कल रात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दिवल के मकाम पर ताज़ा पसिया गिर आने की वजह से कुछ घंटों के लिए शाहरा को बंद किया गया था। ताहम मुतलिका एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई से अब शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। आज सुबह पहले श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों को शाहरा पर सफर करने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद शाहरा को दीगर घाटियों के लिए भी खोल दिया गया। वादी कश्मीर और जम्मू के सरमाई जोन में सरकारी और तस्लीमशुदा गैर सरकारी स्कूल आज से दर्स व तदरीस के लिए दोबारा खुल रहे हैं। तालीमी इदारे 6 जुलाई से गर्मी तातीलात के लिए बंद किए गए थे। तालीम की वजीर सकीना आयतू ने हालिया बारिशों से पैदाशुदा सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेते हुए तमाम मुतलिका जोनल एजुकेशन अफसरान को हिदायत दी गई है कि वह जरूरत के मुताबिक इकदाम करें ताकि तलबा को किसी किस्म की दिक्कतें दरपेश न हो। और अब दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.9 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि आप ये प्रसारण जो है FM बालताल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन पा रहे हैं। और आपको यहाँ पर जो है बता दें कि यात्रा मार्ग पर कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा है। पिछले दिनों की वर्षा से यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की वजह से कुछ रखरखाव का काम भी जो है बन गया है, और इस कारण से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि अब कुछ दिनों तक जो है पहलगाम के प्राचीन मार्ग से किसी भी यात्री को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अभी जो है नए आदेश तक जो है प्रतीक्षा करनी होगी। और अभी यात्रा जो है सिर्फ यानी कि केवल बालताल के मार्ग से जा रही है, यानी यात्रियों को केवल बालताल के मार्ग से जाने की अनुमति दी गई है।

0: जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्षण क्षण की जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाते हैं, यात्रा से जुड़ी हर मुमकिन जो है हर जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास हमारा रहता है। और इस वक्त फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता एस तारिक पहलगाम से, और आइए जानते हैं इनसे। जी तारिक साहब, यात्रा जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन मार्ग पहलगाम पर अभी अस्थायी रूप से जो है इसको रोक दिया गया है उस मार्ग से, तो क्या ताज़ा स्थिति है वहाँ पर और क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास यात्रा को लेकर, मौसम को लेकर?
1: सबसे पहले बलमान आपका शुक्रिया और इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुक्रवाद।
0: जी सुप्रभात।
1: जो है और श्री अमरनाथ जी यात्रा का 25वां दिन है पहलगाम के प्राचीन अमरेश्वरी जो मार्ग पर है। इस समय मौसम सुहाना मगर अपराधित है। आज पहलगाम से श्री अमरनाथ जी यात्रा की बहुत विगमन तक यात्रा मार्ग पर सुबह के समय मौसम जुजी रूप से साफ और धूप वाला रहने की संभावना है, जबकि दोपहर के बाद बादल छाने के साथ 25% इम्कान है कि अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सुबह के समय पवित्र गुफा के नजदीक तापमान 9 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच मौजूद होगा, जबकि पहलगाम और चंद्रवाड़ी में 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मियां रहने का इम्कान है। दोपहर के बाद हल्की या रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना है। पवित्र गुफा के नजदीक अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि निचले इलाकों में 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। पश्चिमी दिशा से 4 से 6 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हल्की हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि वातावरण में नमी की मात्रा 80 से 90% के दरमियान रह सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हालिया वर्षा के बाद यात्रा मार्ग पर उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक प्राचीन यात्रा मार्ग पर अभिषेक मरम्मत और पुण्य बहाली के कार्य तेजी से जारी है। इसके चलते आज भी यात्रा मार्ग को श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए आर्थिक रूप से बंद रखा गया है। हालांकि वर्षा के कारण दुश्वार पहाड़ी मार्ग के कई स्थानों पर कटाव और नुकसान हुआ है, इसके चलते यात्रा पथ की बार बार मरम्मत और पुनः बहाली आवश्यक हो जाती है। इस क्रम से संबंधित एजेंसियां आज भी मार्ग की सफाई मरम्मत और पुनः बहाली के कार्य में जुटी हुई है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सहज बनाया जा सके। 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में 3 जुलाई से अब तक पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,14,000 तक पहुँच चुकी है, जो इस वर्ष टारगेट से भी आगे जा रही है। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 140 छोटी बड़ी वाहनों में 3,823 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था बाल दरबार के लिए गाड़ी के तरफ रवाना है, जो 11 बजे तक गाजीपुर पहुँच जाएगा। आपको ये भी बता दूँ की रात को कोई किसी जगह कई लोगों पे

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे

वयं भगं मित्रं अदितिं दक्षमस्त्रिधं अर्यमणं वरुणं सोमं

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप बने हुए हैं हमारे संग। और आपको बता दें कि आज प्रातः 9 बजे तक कुल मिलाकर 1402 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के द्वार पर हाजिरी दी है, और इनमें पुरुषों की संख्या 897, महिलाएं 397, बालक 30, साधु 11, और इनमें सुरक्षा कर्मी जो है 67 शामिल है, जो कुल मिलाकर ये संख्या बन जाती है 1402। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि यात्रियों को हम जो है सूचित करते हैं कि आप इस बदलते हुए मौसम की स्थिति को ध्यान में रखें, और इस जो भी ज़रूरी आपका सामान है, गर्म कपड़े जो है वो आप जो भी महत्वपूर्ण सामान जो है आप अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि यात्रा के दौरान जो है किसी प्रकार की कठिनाई या बाधा आपको ना हो। और पूरे यात्रा मार्ग पर बोर्ड्स के उपदेश लगे हुए हैं, उनका पालन करें, या जो निर्देश आपको दी जाती है इनका पालन अनिवार्य रूप से करें। और हम ये बता दें आपको कि ये चलने वाली यात्रा जो है इसमें बाबा के भक्तों की संख्या ज़्यादा रहे या कम रहे, लेकिन सुविधाओं में जो है कोई कमी नहीं होती है। श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से प्रशासन जो है इन बातों का ध्यान रख रही है, और श्रद्धालु भी आस्था उसी पहले दिन वाली आस्था और वैसी उसी श्रद्धा उसी उत्साह के साथ जो है अभी भी जो है आ रहे हैं और वापस जा भी रहे हैं। उनकी घर वापसी भी हो रही है और उत्साह जो है बिल्कुल बिल्कुल पहले दिन जैसा ही है। बने रहिए आप इस विशेष प्रसारण के संग।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं

0: यात्रा पर जाने
1: और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्रोताओ बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और आप जानते हैं कि हम इस प्रसारण में हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं और यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसी संबंध में हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आधारश्वर श्रीनगर पांथा चौक से, इस समय फ़ोन लाइन के माध्यम से बने हुए हैं हमारे साथ इमरान नायकू। तो इनसे जानते हैं कि ताज़ा स्थिति क्या है।

0: विभाग ने भी प्रेडिक्शन की है, उनने जो पेशेंगोई की है कि आने वाले दिनों में हल्की सी बारिशें होंगी लेकिन ओवरऑल मौसम बेहतर रहेगा। और इसी की कड़ी में हम देख रहे हैं कि आज श्रीनगर शहर में मौसम बिल्कुल अभी सुबह से बिल्कुल साजगार है और ठंडी हवाएं भी चल रही है, धूप भी खिली हुई है और साथ साथ हल्के से बादल भी छाए हुए हैं। तो इसके अलावा आज यहाँ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से तकरीबन 57 जो अमरनाथ जी यात्री हैं जिनमें साधु साध्वी कुछ इसमें जो है मेल फीमेल भी थे, उनको श्रीनगर से वापस जम्मू की तरफ रवाना किया गया श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से। और ये वो यात्री थे जिन्होंने अमरनाथ जी गुफा का पवित्र गुफा का दर्शन मुकम्मल किया है और यहाँ नाइट स्टे इन्होंने किया था और आज सुबह इनको रवाना किया गया। और इसके अलावा जो कल यहाँ अमरनाथ जी यात्री पहुंचे थे उनका भी एक जत्था जो है आज श्रीनगर से अमरनाथ जी गुफा के पवित्र दर्शन के लिए रवाना किया गया है सिक्योरिटी की कॉन्वाई के बीच में। और अच्छी खबर यह है कि जैसे कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि कल शाम तक 4 लाख से ज्यादा अमरनाथ जी यात्रियों ने इस साल अभी तक पवित्र गुफा का दर्शन किया है। और अभी अमरनाथ जी यात्री आ रहे हैं, हालांकि जो पहलगाम का हमारा एक्सेस है ट्रैक है उस पे शदोमत से काम जारी है और अमरनाथ जी यात्री भी काफी खुश हैं। जैसे कल मैंने आपको एक अमरनाथ जी यात्री उसके साथ जो इंटरेक्शन हुई थी डिटेल्ड में आप तक पहुंचाया था, उसमें देखा आपने या मुसलसल हमारी बात हो रही है, खासकर जो यात्रा अभी तक डिसरप्ट हुई थी ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, तो इसमें काफी यात्री जो है मायूस थे लेकिन रिज्यूम के बाद दोबारा बहाल होने के बाद उनमें वो खुशी
1: वो उत्साह
0: वो उत्साह दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम बिल्कुल इसी तरह से बेहतर रहे, सुहाना रहे और ताकि जो अमरनाथ जी यात्री मुल्क के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंच रहे हैं वो पवित्र गुफा का दर्शन मुकम्मल कर सके। और इसके अलावा अमरनाथ जी यात्रियों के लिए यहाँ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैब में जैसे कि पहले दिन से हम अपडेट कर रहे हैं कि हर तरह की सुविधाएं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से तमाम अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, खाने पीने की सुविधाएं हैं, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, पावर फैसिलिटी है और बाकी जितनी भी
1: सैनिटेशन जी
0: बिल्कुल बेसिक जो जितनी फैसिलिटीज होती है उनको गवर्नमेंट ने पहले से इंश्योर किया है। और साथ ही जो परसों यहाँ श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी एलजी साहब की सदारत में, तो उसमें भी क्लियर का डायरेक्शंस तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को सिक्योरिटी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कहा गया कि हर तरह की यात्रियों को जो है सुविधाएं रखी जाए और किसी तरह की उनको कोई दिक्कत ना हो। और राउंड क्लॉक इस पर हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के साथ साथ बाकी कैंप्स में गवर्नमेंट के जो अलग अलग महकमे हैं उनके जो अमला है उनके जो ऑफिशियल्स है या एम्प्लॉयज है वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं।
1: जी इमरान साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि ट्रांजिट कैंप्स में हमारे यात्री जो है ठहरते हैं दर्शन करने के बाद, तो क्या वो यहाँ के जो प्रबंध किया गया है उनसे संतुष्टि है उनकी?
0: देखिए पहले दिन से ही जब से यात्रा शुरू हुई है जितने भी यात्री यहाँ आए हैं जिन्होंने दर्शन मुकम्मल किया है या दर्शन के लिए आ रहे हैं उनसे हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं और खासकर यही जो आप पूछ रही हैं कि वो यहाँ की फैसिलिटीज को लेके यहाँ के
1: जो प्रसन्न हैं जी
0: उनका क्या फीडबैक है का क्या ख्याल है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव उनका फीडबैक आ रहा है, काफी खुशी का वो इजहार कर रहे हैं। पहले 2-4 दिनों में हमने देखा था कि एक ग्रीवेंस उनकी थी रजिस्ट्रेशन को लेके कि उन लाइंस में क्यों में रहना पड़ता था, वो कह रहे थे कि टाइम इसमें काफी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो जो ग्रीवेंस थी वो कहीं ना कहीं उनकी दूर हो गई। और बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज को लेके जब उनसे फीडबैक ले रहे हैं तो अभी तक कोई हमें उनकी शिकायत या कोई ग्रीवेंस सामने नहीं आई है।
1: जी इमरान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विवरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं ये थे हमारे संवाददाता पांथा चौक श्रीनगर से, यानी कि श्रीनगर ट्रांजिट कैंप से, जिन्होंने ये जानकारी दी कि हमारे यात्री जो है बहुत ही संतुष्टि के साथ यात्रा को संपूर्ण करते हैं और फिर घर वापसी भी बहुत ही खुशी प्रसन्नता के साथ हो रही है और मौसम भी सुहाना हो चुका है।

कुछ दिनों बरसात रही, श्रावण का महीना है, तो ये एक आम सी बात है। इस मौसम में बदलाव तो आता है, वर्षा होती है, लेकिन फिर भी जो है ये यात्रा जो है फिर से शुरू हो चुकी है, और ये यात्री बहुत प्रसन्न है इस मौसम को लेकर भी, क्योंकि हमारे यात्री जो है ज़्यादातर गर्म क्षेत्रों से आते हैं, और फिर यहाँ के सुहाने मौसम में वो रहकर इस मौसम में भी जो है इस मौसम का आनंद लेते हैं, और आनंद लेते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन भी करते हैं और इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। और हमारी यही कामना कि आपकी ये यात्रा सुखद रहे, सुरक्षित रहे।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा की ये पवित्र यात्रा जो है, इसमें यात्री समो दर समो जम्मू पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने को उत्सुक नज़र आते हैं। लगातार पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के जत्थे जम्मू के रेलवे मार्ग और सड़क के माध्यम से जम्मू में प्रस्थान करके टोकन, रजिस्ट्रेशन, RFID कार्ड्स, मेडिकल चेकअप्स करा के अपनी बारी की प्रतीक्षा में भी जो है बहुत ही उत्सुक नज़र आते हैं। और फिर दूसरी ओर दर्शन करके तीर्थयात्री भी अपनी यात्रा सुखद और मंगलमय तरीके से पूर्ण होने के बाद अपने घरों, अपने क्षेत्रों की ओर लौट भी रहे हैं। और तीर्थयात्री यहाँ पर ये भी आपको आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि तीर्थयात्री प्रशासन की सुविधाओं से संतुष्ट हैं और सुरक्षा कार्रवाई से भी बहुत प्रसन्न नज़र आते हैं। यहाँ जो है वापसी पर भी जो है जब वो घर वापसी करते हैं यहाँ से, तो पर इस पर भी जो है तीर्थयात्री अधिक अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस और प्रशासन की इन सुविधाओं को लेकर प्रसन्न है। और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चलाए जा रहे सारे प्रबंध और हम ये कहेंगे कि प्रबंध जो किए गए हैं और व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के प्रशंसा भी कर रहे हैं। और तीर्थयात्री जो है इनकी बड़ी भीड़ दिन ब दिन बढ़ रही है और आज भी हम ये कहेंगे कि कल शाम को 4,14,000 की संख्या पार हो चुकी है, जो कि एक हम ये कहेंगे कि प्रशासन की व्यवस्थाओं के अच्छे कार्य की एक मिसाल है, उदाहरण है। यात्रा के दौरान सरकारी निर्देशों का पालन करना भी जो है बहुत आवश्यक है, जो तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए ना सिर्फ सरलता बनाता है बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए अनुशासन को अनिवार्य भी बनाता है।

श्रोताओ बने हुए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और आपको बता दें कि ये चल रही या श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है, क्योंकि कुल तीर्थयात्रियों की संख्या जो है 4 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। और उपराज्यपाल जी ने कहा है कि भगवान शिव जी की असीम कृपा से पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा ने एक उल्लेखनीय पड़ाव पार कर लिया है और 4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने इस पवित्र यात्रा को पूरा कर लिया है। और अब तक कल तक हम बात करें तो 4,14,000 श्रद्धालुओं ने बाबा भोले के दर्शन किए हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं इस आशीर्वाद के लिए बाबा श्री अमरनाथ जी के चरणों में नमन करता हूँ और उन सभी का हृदय से धन्यवाद भी किया जिन्होंने इस यात्रा को सभी के लिए वास्तव में एक दिव्य अनुभव बनाने में मदद की।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि आज अभी प्रातः 10 बजे तक कुल 2801 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के द्वार पर हाजिरी दी है, दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 1843, महिलाएं 794, बालक 55, साधु 19, साध्वी 1 और सुरक्षा कर्मी 89 इनमें शामिल है। ये कुल मिलाकर आज 10 बजे तक 2801

बाबा के भोले भक्त जो है दर्शन कर चुके हैं आज 10 बजे तक। और श्रोताओं आपको बता दें कि अगर हम बात करें कि आज सुबह प्रातः जो जत्था भगवती नगर आधार शिविर से जो श्रीनगर की तरह श्रीनगर की ओर जो है रवाना हुआ, जिनमें कुल संख्या जो है वो रही 3823 तीर्थयात्रियों की, वो काफ़िला जो है वो जत्था जो है बालताल का काफ़िला जो है कश्मीर की ओर जो है आ रहा है। और हम ये कहेंगे कि बानिहाल की सुरंग यानी कि बानिहाल की टनल से जो है ये गुज़र चुका है, और वहीं बालताल से जम्मू की ओर जा रहा जत्था जो है कुछ ही देर में बानिहाल पहुंच रहा है। बने रहिए क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हमारे संग श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, जो कि आप सुन पा रहे हैं FM 103.7 MHz पर। जी हाँ, बालताल FM 103.7 MHz पर और पहलगाम 100.1 MHz पर DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी जो है आप ये प्रसारण सुन पा रहे हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही प्रसन्नता और उत्सव का समय होता है। तीर्थयात्री बहुत ही श्रद्धा, आशा और नवीनकरण की भावना के साथ स्वामी श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हाजिर होते हैं और फिर शांति और संतुष्टि और श्रद्धा की भावना के साथ प्रसन्न होकर बाबा के दर्शन करके अपने घरों, अपने क्षेत्रों की ओर लौटते हैं। श्रोताओं, ये एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कठिन अवश्य है, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा भी है जो अर्थ और महत्व से भरी है। बाबा के भक्तों को कई बार कठिन परिस्थितियों से गुजरकर पहाड़ों के माध्यम से पद यात्रा भी करनी पड़ती है। हालांकि यात्रा आध्यात्मिक और आत्मनिरीक्षण और चिंतन का एक अवसर भी है। यात्री पवित्र गुफा में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने के साथ साथ वो हिमालय की सुंदरता और प्राकृतिक की सुंदरता का अनुभव भी करते हैं और साथ ही सुहाने से मौसम का आनंद भी लेते हैं। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो भक्त जो बाबा बर्फानी के द्वार पर आते हैं, माथा टेकते हैं, दर्शन करके फिर जाते हैं और दर्शन से हम ये कहेंगे कि तृप्त होकर अपने अपने घरों, अपने अपने क्षेत्रों की ओर लौटते हैं। जो हम ये कहेंगे कि बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद पवित्रता हासिल करने में जो भक्त सफल होते हैं, हम ये कहेंगे कि हमारी मनोकामनाएं, प्रार्थनाएं भी यही है कि आप के साथ जो है बाबा बर्फानी का आशीर्वाद बना रहे और आप पवित्र गुफा में हाजिरी देकर इस पवित्र यात्रा के बाद पवित्रता हासिल करने में सक्षम हो जाएं।

0: वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिए।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। आप हमें सुन पा रहे हैं बालताल FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो है हम उपलब्ध हैं और आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि यात्रा के दौरान जो है सरकारी निर्देशों का पालन करना बहुत ही आवश्यक बनता है, जो तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए ना सिर्फ सरलता लाता है बल्कि तीर्थ यात्रियों के लिए अनुशासन को अनिवार्य भी बनाता है। आधार शिवर भगवती नगर से मैं जो है सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं और सरलताओं को ध्यान में रखा गया है, और न सिर्फ वहाँ बल्कि हर एक आधार शिविर पर यही कार्य चल रहा है तीर्थ यात्रा के लिए। और यही बातें जो है फिर तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित भी करती हैं, उनके जोश उनके उत्साह को भी जो है बनाए रखती है। और हम ये कहेंगे कि सुबह तड़के ही तीर्थयात्री जो है यात्रियों के प्रस्थान होने से पहले ही बाबा भोलेनाथ के जयकारे और जाप की आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती हैं, जो पूरे क्षेत्र को मंत्रमुग्ध कर देती है। और ना सिर्फ एक ट्रांजिट कैंप में बल्कि सारे ट्रांजिट कैंप्स में भी यही देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन की प्रतीक्षा में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए दिख जाते हैं, और उन भक्तों को इन श्रद्धालुओं को हर रोज़ हज़ारों की संख्या में जो है रवाना कर दिया जाता है। और प्रार्थना यही कि आपकी ये यात्रा सुखद रहे, सफल रहे, सुरक्षित रहे।

आज भी बड़ी आस्था के साथ कुल मिलाकर 3823 तीर्थ यात्रियों का एक जत्था जो है, हम ये कहेंगे कि 20वां जत्था, इसको वादी की ओर रवाना कर दिया गया 140 छोटे बड़े वाहनों में। और हम ये कहेंगे कि भोलेनाथ जी के नाम का जाप जपते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए, बड़ी आस्था के साथ सुहाने से मौसम में सुरक्षित, और हम ये कहेंगे कि सख्त सुरक्षा और व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा है। पिछले कुछ दिनों के लगातार वर्षा से यात्रा मार्ग पर जो है कुछ रखरखाव का काम बन गया है, और इस कारण से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि अब से बस कुछ दिनों तक पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जो है किसी भी बाबा भोले के भक्त को यानी कि यात्री को जो है यात्रा की अनुमति फिलहाल जो है नहीं दी जाएगी, और आदेश नए आदेश तक जो है आपको प्रतीक्षा करनी होगी। फिलहाल जो है बालताल के मार्ग से जो ये यात्रा है वो चल रही है, और हम ये कहेंगे कि फिलहाल प्राचीन पहलगाम के प्राचीन मार्ग से अस्थायी रूप से यात्रा को उस मार्ग से रोक दिया गया है।

0: श्रोताओ, ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं बालतल एफ एम 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफ एम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। और इस विशेष प्रसारण में हम आप तक समाचार भी पहुंचाते हैं। और आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी दिल्ली से आप अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुन पाएंगे। बने रहिए हमारे संग।
1: आकाशवाणी दिल्ली खबरों के लिए।

0: प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपंडेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams. Both Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over alleged police action during students' protest over the NET issue. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., Lok Sabha Speaker Om Birla congratulated India's star weightlifters Mirabai Chanu, Chalambam Rishikanta Singh, Raja Muthupandi and para power lifter Chandu Kumar on winning medals at the 23rd Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla warned that he will be forced to take action against those members who are attempting to undermine the traditions and decorum of the House. In the Rajya Sabha, the scene was no different. When the House assembled to begin its proceedings at 11 a.m., Union Ministers laid papers.

जी श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में और क्षण की जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और इस वक्त हम आपको बता दें कि आज 11 बजे तक कुल मिलाकर 4,414 बाबा के भक्तों ने जो है बाबा भोले के दर्शन किए हैं, उस द्वार पे अपना माथा टेका है। उनमें से अगर पुरुषों की संख्या की बात करें तो पुरुषों की संख्या रही 2,931, महिलाएं 1,249, बालक 85, साधु 26, साध्वी 2 और सुरक्षाकर्मी 121। यूँ कुल मिलाकर ये संख्या बन जाती है आज 11 बजे तक 4,414।

श्रोताओं बने हुए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में बालतल एफ एम 103.7 में कहा पहलगाम एफ एम 100.1 में कहा डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एआईआर ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा भी हम आपके साथ जो है उपलब्ध हैं। और अब बता दें आपको कि आज अब के बाद जो ये प्रसारण है उसमें जुड़ रही हैं हमारी साथी पजमान।

विशेष प्रसारण श्रेया बनर्जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz और FM पहलगाम 100.1 MHz पर। न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। मैं आपकी उद्घोषिक पजमान फेरोज आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी अभी से लेकर शाम 6 बजे तक।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बता दें, हम आज 12 बजे का अपडेट आपके साथ हम साझा करना चाहेंगे, जिसमें कुल संख्या तीर्थ यात्रियों की है 6153, जिसमें पुरुषों की संख्या 4086, महिला 1759, बालक 120, साधु 35, साध्वी 3, ट्रांसजेंडर 1, सुरक्षा कर्मचारी 149। तो कुल मिला के जो संख्या बनती है 6153 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं आए आपको दिल्ली लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन के द्वारा। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 9596990954, 9596990954। इसके अलावा हमारे टोल फ्री नंबर्स भी है जिससे आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जम्मू के लिए है 1800180071 98, 1800180071 98। श्रीनगर के लिए 1800180071 99, 1800180071 99। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, akashvanibalthal@gmail.com, akashvanibalthal@gmail.com। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आए आपको दिल्ली लिए चलेंगे, आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। हुकूमत ने लोकसभा में अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की जानिब से जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक दरख्वास्तों की कल समाप्त करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। और 22वीं दौलत मुशरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीम बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 में तरमीम करना है। दोपहर 12 बजे पहले इल्तवा के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मजकूरा बिल ऐवान में पेश किया। बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान नीट मामले पर तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर बहस का मुतालबा करते हुए अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अरकान नीट मामले पर बहस का मुतालबा कर रहे थे और ऐवान में पेश किया गया बिल इस्लाहात की जानिब एक शुरुआती कदम है। उन्होंने कहा कि यह बिल नहायत अहमियत का हामिल है और इस पर जामे बहस जरूरी है जो ऐवान की इज्तमाही राय और कौम के जज्बात की अक्कासी करे। जनाब बिरला ने अरकान से अपील की कि वो अपने ख्यालात और तजावीज पेश करें ताकि मुल्क के इम्तिहानात के निज़ाम से मुतालिक मसाइल के मुअस्सर हल के लिए मुनासिब इकदामात किए जा सकें। उन्होंने तमाम अरकान से ताउन करने और इस अहम बिल पर बहस में सरगर्मी से हिस्सा लेने की भी दरख्वास्त की। ताहम अपोजिशन अरकान तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामा आराई जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने भारत की मुमताज वेटलिफ्टर्स मीराबाई चानू, ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को स्कॉटलैंड में 23वें दौलत मुशरका खेलों में तमगे जीतने पर मुबारकबाद दी।
2: 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की असलाहत के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलेगनी की क़्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की असलाहत पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज़ जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात को काबिल एतमाद बनाया जा सके।
3: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डीका इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृतलाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। जेडीयू लीडर और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय झा ने आज कहा कि इम्तिहानात में इसलाहात के सिलसिले में तश्कील दी गई आला इख्तियाराती टास्क फोर्स से इंसानी मुदाखलत कम होगी और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार फराहम होगा। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब झा ने कहा कि यह कमेटी मुस्तकबिल में बगैर किसी खामी के इम्तिहानात को यकीनी बनाने की खातिर एक पुख्ता तरीक़ेकार फराहम करेगी।
4: जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगा।
1: बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के एमपी तरुण चुग ने कहा कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल को खत्म करने की खातिर मुजवजा बिल से वजीर आजम ने मोदी के मुल्क के नौजवानों और तलबा के मुस्तकबिल को महफूज करने के पुख्ता अजम की अक्कासी होती है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज अपोजिशन पार्टियों पर ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने और सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक बिल पर बहस से बचने का इल्जाम लगाते हुए उनकी शदीद नुक्ताचीनी की। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल उन अफराद के खिलाफ सख्त और मुकर्रर वक्त में सजा का तरीक़ेकार फराहम करेगा जो पेपर लीक में मुलव्वस पाए जाएंगे।
5: कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए इस वक्त।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दरख्वास्तों पर समाज से इत्तेफाक किया है जिनमें इम्तिहानात के पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा के खिलाफ पुलिस फोर्स के ताकत के मुबैना ज्यादा इस्तेमाल की बात कही गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और वी मोहन्ना पर मुश्तमिल एक बेंच ने एक अलहदा अर्जदाश्त पर गौर करने से भी इत्तेफाक किया जो उन पुलिस एहलकारों के कुंबे के अफराद ने दाखिल की है जिन पर एहतजाज के दौरान हमला हुआ था। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह मुशाहदा किया कि पुरअमन और कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज के हक को आईनी तहफ्फुज हासिल है। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो अदालत के साथ ताउन करेंगे। इस दौरान मुबैना पेपर लीक और दोबारा नीट इम्तिहान के ऐलान के सिलसिले में 3 मई को नीट यूजी को मनसूख किए जाने के पेश नजर आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट सुधाकर सिंह की जानिब से दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर समाप्त करते हुए अदालत ने कहा कि वो नीट इम्तिहान ऑनलाइन कराने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई नंदन निलेकरी की क्यादत में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तजवीज पर गौर करेगी। खत्म हफ्ता में अमरीका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर फौजी हमले रोके जाने के पेश नजर आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में आज 5% से ज्यादा की कमी आई। ब्रेंट खाम तेल का आलमी इशारिया 5.3% गिरकर 91 अमरीकी डॉलर और 68 सेंट फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल में 5.4% से ज्यादा की कमी आई और ये 84 अमरीकी डॉलर और 44 सेंट फी बैरल हो गया। ईरान की जानिब से इशारा दिए जाने के बाद कि जब तक अमरीका भी फौजी कार्रवाइयां रोके रखता है तब तक वो मजीद हमले नहीं करेगा, जिससे इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि इस महाद आराई का एक सिफारती हल निकल सकता है। शूटिंग में आज चीन में ISSF आलमी कप के खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता है। 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप हर किसी के लिए तहरीक का बाइस है जिससे इसमें शामिल होने वाले मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। इस 7 रोजा टूर्नामेंट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, कीनिया और जमैका जैसे ममालिक के शिरकत करने का इम्कान है जो मुख्तलिफ जुमरों में मुकाबला करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने लोकसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की जानिब से जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक दरखास्तों की कल समाअत करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। और 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Akashani News, Delhi.
1: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecast heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
5: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।

0: प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
0: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
4: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार

0: रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का उठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
4: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर और FM पहलगाम 100.1 MHz पर। न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आज दोपहर तक का जो दर्शन अपडेट है वह हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो कुल मिला के 8,142 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,346, महिला 2,414, बालक 152, साधु 46, साध्वी 3, ट्रांसजेंडर 1, सुरक्षा कर्मचारी 180। तो कुल मिला के जो संख्या बनती है 8,142 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

0: श्रोताओं जुड़े हुए हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संग, जो आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। अभी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनंतनाग से एस तारिक साहब। आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट लेके आए हैं। जी तारिक साहब,
1: बहुत शुक्रिया फरजाना। आज प्राचीन मार्ग पहलगाम से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग पर सुबह से ही मौसम जज्वी रूप से साफ और धूप वाला रहा है, जबकि धूप के बाद बादल छाने के साथ 25 से 25% होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस समय पहलगाम और चंद्रवारी में 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। शाम के अवकात हल्की या रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना भी है। पवित्र गुफा के नजदीक अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। यूं तो हालिया वर्षा के बाद यात्रा मार्ग पर उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए चंद्रवारी से पवित्र गुफा तक प्राचीन यात्रा मार्ग पर आवश्यक मरम्मत और पुनर्बहाली के कार्य तेजी से जारी है। इसके चलते आज भी यात्रा मार्ग को श्रद्धालुओं की आमद रफ्त के लिए आरजी रूप से बंद रखा गया। हाल के वर्षा के कारण दशवार पहाड़ी मार्ग के कई स्थानों पर कटाव और नुकसान हुआ है, जिसके चलते यात्रा पथ की जो बार बार मरम्मत और पुनर्बहाली आवश्यक हो चुकी है। इस क्रम से दीगर एजेंसियां जो आज भी मार्ग की सफाई मरम्मत और पुनर्बहाली के कार्य में जुटी हुई है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सहज बनाया जा सके। 57 दिनों की चलती इस पवित्र यात्रा में 3 जुलाई से अब तक पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,24,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि आज रिपोर्ट फाइल करने तक 9,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से जो 140 छोटी बड़ी वाहनों में मुश्तमिल 3,823 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था बालतल मार्ग के पड़ाव पहुंच चुका है। इस जत्थे में 2,882 पुरुष, 838 महिलाएं, 2 बालक, 84 साधु और 17 साधुइयां शामिल थी, और बालतल से जम्मू के ओर दर्शन पाने वाले श्रद्धालु जम्मू पहुंच चुके हैं। पहलगाम के नुनवन आधार शेवर, शिशनाग और पंचतरणी शिवरों में इस वक्त यात्री मौजूद नहीं है। अलबत्ता यात्रा मार्ग और सभी आधार शिवरों पर सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है, और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी सेवाएं लगातार फराहम कर रही है, जबकि सुरक्षा बल, सफाई व सैनिटेशन, जल, बिजली, जल सप्लाई और दीगर आवश्यक सेवाएं भी बिना किसी रुकावट के जारी है। सभी लंगर शेवर में भी श्रद्धालुओं के लिए

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जम्मू भगवती नगर से जावेद मेहराब साहब। जी जावेद साहब
1: जी, देखिए आज शहर में मौसम एकदम बेहतर है। सुबह से ही धूप खिली हुई है। यहाँ आज स्थानीय स्कूल भी खुल चुके हैं लंबी छुट्टियों के बाद, तो शहर में रौनक है। श्रद्धालु शहर भर में जहाँ घूम रहे हैं, वहीं यहाँ शहर में स्थानीय लोग, स्कूल और बाकी जो कारोबारी संस्थान है सब खुले हुए थे। आज सोमवार का दिन था और सोमवार के दिन में खास तौर पर पूजा अर्चनाएं होती है। सावन के महीने में सुबह से ही मंदिरों में और खास तौर पर बागे बहू एक पर्यटक स्थल है, यहाँ वहाँ स्थित काली माता मंदिर और उसके अलावा जो विभिन्न शिव स्थल है, यहाँ स्थानीय मंदिर हैं जिनमें जैसे रामेश्वर मंदिर है, उसके अलावा रघुनाथ जी का मंदिर है, उसके अलावा पंचवक्तार शिव स्थल है, बहुत बड़ा मंदिर है। खास तौर पर सोमवार के दिन जो होती है वो सावन का जो ये सोमवार होता है ये खास तौर पर पूजा अर्चनाओं के लिए रखा जाता है। तो इसमें समझ लें आपके आज पूरे दिन सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चनाएं हो रही थी जिसमें श्रद्धालु भी खास तौर पर हिस्सा ले रहे थे। तो मंदिरों में भी ठीक ठाक रश दिख रहा है और उसके अलावा शहर भर में आज स्कूल खुले, कारोबारी संस्थान खुले, तो शहर में रौनक बनी हुई है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में जहाँ स्थानीय लोग हैं वहाँ श्रद्धालु भी घुल मिल गए हैं, क्योंकि पिछले लगभग एक महीने के दौरान जिस तरह से श्रद्धालुओं का आना जाना और उसके बीच में इस तीर्थ यात्रा का शुरू होना, इस बीच स्थानीय लोगों के साथ एक जो कांटेक्ट है वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं का बना हुआ है। इस बीच पर्यटक विभाग ने भी कई बार कोशिशें की कि वो अपने पर्यटन जो स्थल हैं उनको भी उन तक भी श्रद्धालुओं को ले जाएं, लेकिन बारिशों की वजह से कुछ टाइम से वो बंद रही वो व्यवस्था। लेकिन आज अब पिछले दो दिन से लगातार मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, आसमान पर सूर्य देवता ने खुलकर धूप आज दी है, तो थोड़ी गर्मी भी है, उमस भी है, लेकिन उसके बावजूद जो रौनक है वो बनी हुई है। और इस बीच जो हजारों तीर्थ यात्री यहाँ लगातार दो दिन से तीन दिन से लगातार यहाँ जो निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, वो उसी जोश जज्बे और आस्था के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन की तरफ निकल रहे हैं। और लगातार तीर्थ यात्री निवास जो है भगवती नगर, और वहाँ तीर्थ यात्री तैयारियों में भी लगे हुए हैं, क्योंकि हर पिछले तीन दिनों से लगातार तीर्थ यात्रा लगातार जा रही है और आज भी तीर्थ यात्रा जो है वो यहाँ से रवाना हुई, जिसमें लगभग 3823 श्रद्धालु थे। पुरुषों की संख्या 2882 थी, महिलाएं 835 थी, बच्चे, साधु साधवी सब इस काफिले में शामिल थे और लगभग 140 वाहनों का ये काफिला घाटी की और बालटाल के मार्ग की तरफ यहाँ से रवाना हुआ। तो एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। यात्रा में इस वर्ष रिकॉर्ड अभी तक लगभग 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी कहा है कि भगवान शिव की असीम कृपा से रविवार तक लगभग 4 लाख जो श्रद्धालु हैं, 4 लाख से ज्यादा, 4,14,000 श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के पवित्र यात्रा पूरी कर ली है और आंकड़ा पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार यात्रा जो है 28 अगस्त का उसका समापन होगा। तो अभी तक जो यात्राएं रही हैं वो लगभग अगर हम पिछले साल की यात्रा की बात करें तो लगभग 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने तीर्थ यात्रा पूरी की, वहीं अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग 5.25 लाख तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। तो तीर्थ यात्रा लगातार अब इस बार क्योंकि 4.25 लाख को पार कर चुकी है, तो इसमें अभी बहुत पूरा लगभग एक महीने से ज्यादा का वक्त अभी भी बचा हुआ है, तो इस दौरान उम्मीद है कि इस बार जो तीर्थ यात्रा है वो इस आंकड़े को भी पार करेगी जो सबसे ज्यादा होगा। तो तीर्थ यात्रा लगातार इस बीच सख्त सुरक्षित घेरे में भी घाटी की ओर रवाना हुई है। यहाँ संवेदनशील इलाकों और पहाड़ी मोड़ों पर अतिरिक्त सेना बल तैनात किए गए हैं। यहाँ बालटाल मार्ग की ढलान, दुर्गम रास्तों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरे रूट पर राहत दल, एम्बुलेंस, मेडिकल कैंप्स स्थापित किए हैं। उसके अलावा जो माउंटेन रेस्क्यू टीमें हैं वो भी तैनात की गई है। तो पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि श्रद्धालुओं को एक तो यहाँ से बहुत हर्षोल्लास के साथ रवाना किया जाए और उसके अलावा जो है उनके लिए तमाम तरह के इंतजामों को भी पुख्ता बनाया जाए। तो उसमें पूरी तरह से श्री श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसके अलावा इस तीर्थ यात्रा को स्वच्छता के साथ भी जोड़ा गया है, तो यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। तो बिल्कुल वो माहौल बराबर एक जो लगभग पिछले छह दिनों तक जो स्थायित रही उसके बाद फिर से एक माहौल बन गया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अब दोबारा भविष्यवाणी की गई है कि 28 के बाद लगभग कल के दिन, कल से बारिशों का सिलसिला फिर शुरू होगा। लगभग ये 3 दिन रहेगा, 28, 29, 30, 31 को फिर से मौसम ठीक होने की उम्मीद है। लेकिन अभी फिलहाल बारिशों का एक नया सिस्टम बन चुका है क्योंकि श्रावण के महीने में खास तौर पर बारिशों का सिलसिला ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो उसमें तीर्थयात्री भी वो भी मन से, उनको भी पता है, तैयार है कि मौसम कई बार खराब भी होता है और उस दौरान खराब मौसम के दौरान भी जो प्रशासन और बोर्ड जो है अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं करता है, प्रबंधन करता है श्रद्धालुओं के लिए, वो पूरी तरह से पक्के होते हैं और जब अनुमति मिलती है तो तब पूरी तरह से उसका ध्यान रखा जाता है कि यात्रा सुरक्षित तरीके से घाटी की ओर रवाना हो। तो ये सारी प्रक्रियाएं और प्रबंधन जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट है और सभी लोगों का साथ के साथ, जहाँ स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, बोर्ड, कर्मचारी, प्रशासन, समीक्षाएं, उसमें उपराज्यपाल की तरफ से भी खास तौर पर मौसम को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी का खास ख्याल रख के ही श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ही श्रद्धालुओं को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो फिलहाल जो यहाँ माहौल बना हुआ है वो एकदम भक्तिमय है। श्रावण का महीना है, चारों तरफ पूजा अर्चनाएं हो रही है, मंदिरों का शहर है ये, तो यहाँ चारों तरफ आपको कहीं ना कहीं भजन, कीर्तन और बाकी सारी चीजें चलती हैं। तो उसमें जो शिव भक्त भी जो हैं, जो यहाँ घाटी की ओर जाना चाहते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक पहला कदम उनका जो जम्मू में होता है तो वो एक भक्तिमय कदम होता है। यहाँ सारी तरह की वो व्यवस्थाएं रखी गई। जी
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया।

0: आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर हमारे संवाददाता रहीम रिजवान साहब गांदरबल से। आए देखते हैं, जानते हैं क्या कुछ अपडेट लेके आए हैं वो यात्रा के हवाले। जी रहीम रिजवान साहब
1: जी, यात्रा के हवाले से हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि बालतल के पूरे क्षेत्र में आज मौसम बड़ा ही सुहाना है और खुशगवार मौसम के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल मुख्य मार्ग से बीते दिनों की तरह सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए लगातार पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के समुचित प्रबंध किए गए हैं, जिससे श्रद्धालु संतोष व्यक्त कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु पवित्र गुफा जाकर दर्शन करके माथा टेकते हैं और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हासिल करते हैं। और इस हवाले से अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज सुबह सवेरे 10,664 यात्री बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन श्रद्धालु में 7,188 पुरुष, 3,199 महिलाएं, 48 बालक बालिका, 53 साधु एवं 176 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। बम बम बोले हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए ये श्रद्धालु काफी जोश और जज्बे के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। दुमेल कंट्रोल गेट से पवित्र गुफा तक जो 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता है, ये तय करने के दौरान यात्रियों में काफी उत्साह थी और वो जोश और जज्बे के साथ जय जयकारे के नारे बुलंद करते हुए पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं। और जब उन्होंने दर्शन, जो यात्री दर्शन करके वापस सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं, उनमें से 1,370 कुल सरकारी आंकड़ों के अनुसार तैदाद बताई जाती है, जिनमें 987 पुरुष, 251 महिलाएं, 43 बालक बालिका, 17 साधु एवं 79 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इस तरह दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचने का यात्रियों का ये सिलसिला देर रात गए तक जारी रहेगा। दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन गांदरबल ने यात्रियों के लिए यात्रा रूट के हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं और जबकि सुरक्षा के भी जगह जगह कड़े प्रबंध किए गए हैं। अगर हम ट्रांजिट कम मनीगाम की बात करेंगे या ट्रांजिट कम शादीपुरा की बात करेंगे, ये दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर, तो शाम 5 बजे के बाद जो भी यात्री चाहे जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से यहाँ पहुंचते हैं या बालतल बेस कैंप से वापस दर्शन करके जम्मू की ओर रवाना हो रहे हैं, तो 5 बजे के बाद यहाँ से उनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस दौरान इन यात्रियों को रात भर इन्हीं दो ट्रांजिट कैंपों में कायम करना पड़ता है। जिला प्रशासन गांदरबल ने इन दोनों कैंपों में यात्रियों की सुविधा के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जिसको देखकर यात्री काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। हालांकि शाम के वक्त जो ही यात्री ट्रांजिट कैंप मनीगाम में बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ की सुंदरता देखकर, खासकर नाले सिंध की ताजा हवाएं और सुंदरता देखकर वो झूम उठते हैं और बार बार यही कहते रहते हैं कि ये तो वाकई जन्नत बेनजीर है और यहाँ आकर इंसान का दिल यही कहता है कि मैं यही रुक जाऊं और यहाँ वापस जाने को मन नहीं करता है, तो यहाँ की सुंदरता जो है वो बार बार मोह लेती है, लिहाजा यात्री यहाँ घूमना पसंद करते हैं। लेकिन उन्हें सिक्योरिटी के, सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि उनकी सुरक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, तो बिना सिक्योरिटी के कड़े प्रबंध जो उनके लिए किए गए हैं उससे बाहर निकलने के लिए उनको अनुमति नहीं दी जाती है। जी
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद श्रोताओं, ये हमारे संवाददाता थे गांदरबल से रहीम रिजवान साहब। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन रामबन से। आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इनके पास। जी तस्कीन साहब।
1: जी शुक्रिया भाई। वैसे अपडेट यही है कि जो सुबह श्री अमरनाथ यात्रा का काफिला यहाँ से रवाना किया गया था वो बेहतर तरीके से टनल पार करके कश्मीर के बालतल की तरफ रवाना किया गया, और जो वापस अब वहां से ट्रैफिक आ रहा है वो भी बाहरी भरकम कानवाई है। 129 गाड़ियों पर मुश्तमिल है और 4331 यात्री इस 19वें बैच में शामिल है जो जम्मू की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी रवाना कर दिए गए हैं। लेकिन वो इस वक्त रामबन से गुजर रहे हैं, रामबन बानहाल के सेक्टर से आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उस पर जो बाकी ट्रैफिक है, जो सिविल ट्रैफिक है, वो अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे स्लाइडिंग की जद में आई है। कल रात को भी हुई है और स्लाइडिंग परसों भी हुई थी यहाँ उधमपुर के सेक्टर में और आज भी हुई है। अभी 12 बजे के आसपास जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पर जो उन्होंने इतला दी है उसके मुताबिक लोगों से अपील की गई है कि वो सफर ना करें क्योंकि फ्रेश लैंड स्लाइडिंग हुई है। और अभी कुछ वक्त पहले मेरी जो ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम रामबन से बात हुई, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन से बात हुई, तो उनका कहना है कि अभी जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसे जो वहां पर पार्शियली रेस्टोर किया गया है, देवल उधमपुर के नजदीक इलाका पड़ता है हाईवे का, वहां पहले ही सारा खराब हुई है और मजीद वहां स्लाइडिंग हुई है, अब वहां पर किसी हद तक वो बेहतर किया गया है और फिलहाल चिनानी और यहाँ उधमपुर के दरमियान जो ट्रैफिक है उसी को सिर्फ चलने की इजाजत दी गई है, जबकि जो बाकी ट्रैफिक मुतद्दिद मुकामात पर रोका गया है काजीगुंड तक खासकर, तो उसे अभी तक चलने की इजाजत नहीं दी गई है और ना ही किसी ताजा ट्रैफिक को जम्मू या श्रीनगर से चलने की इजाजत दी जाएगी। मौसम बिल्कुल ठीक ठाक रहा, आज धूप रही और हल्के हल्के बादल भी साथ साथ रहे और इस वक्त भी थोड़े थोड़े बादल है कुछ कुछ इलाके में यहाँ इस सेक्टर में, तो जो शाहरा पर अब जो यात्रा की वापस कार्रवाई जा रही है वो उसे निकाला जा रहा है। और आज सुबह भी जब हाईवे बाकी ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया था लेकिन यात्रा के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे, एक ट्यूब को वहां पर थ्रो किया गया था, वहां पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी है और बाजाप्त और SSP रामबन ट्रैफिक पुलिस जो है नेशनल हाईवे के राजा आदिल हमीद वो बिल्कुल निगरानी कर रहे हैं, बाकी जो उनके मातहत अमला है DSP वगैरह वो भी हाईवे पर ही है, तो ग्राउंड द क्लॉक वहां पर काम चल रहा है जो समरोली और ये जो देवल वगैरह का इलाका कहेंगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 दिन से 4 दिन से वहां पर मुसलसल स्लाइडिंग हो रही। कल भी 12 घंटे के बाद हाईवे को मतलब बहाल किया गया था, तो इसलिए यात्रा को निकाला जा रहा है। उसके बाद उम्मीद है कि जो यहाँ ट्रैफिक है बहुत सारा ट्रैफिक रुका है, हजारों की तादाद में दोनों तरफ से गाड़ियां हैं जो जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू जाना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि देर तक कोई इस पर फैसला लिया जाए क्योंकि वहां हालत जो है हाईवे की बहुत खराब है, बहुत मड है, कीचड़ है, बहुत भारी पसी है, तो उस वजह से वहां पर जो ट्रैफिक को एकदम अगर छोड़ा जाए तो बहुत भारी ट्रैफिक होता है, हजारों की तादाद में गाड़ियां नेशनल हाईवे पर अंदाजन 10,000 से ज्यादा गाड़ियां रोजाना हाईवे पर गुजरती हैं, तो उस वजह से जहां फिर बोतल डेक्स होते हैं हाईवे के, जहां पर तंग शाहरा होती है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बहुत सारे ऐसे मुकाम अभी भी हैं जहां पर प्रॉब्लम है, और जब बारिशें या ये होती है तो उस वजह से जो स्लाइडिंग होती है पत्थर गिराते हैं तो उससे हालत मजीद खराब हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारी जगहें उधमपुर और बानहाल के दरमियान कहेंगे जहां पर वन वे ही ट्रैफिक है, एक ट्यूब मुसलसल कई किलोमीटरों तक बंद है, ये उधमपुर में भी है और रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी है, और एक ही ट्यूब से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वो मतलब जो टूरिस्ट भी है इसमें, जम्मू कश्मीर के मुसाफिर भी है, पूरे मुल्क के मुसाफिर ये भी है, फौजी एहलकार होते हैं, छुट्टी पर जाने वाले लोग होते हैं, गैर रजिस्टर्ड यात्री होते हैं, उनको मतलब वो सब इंतजार कर रहे हैं और उनसे अपील की गई कि वो ताउन

0: है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कई मशीनें, भारी भरकम मशीनें वहां पर मलबा और वो कीचड़ साफ कर रही है और कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपडेट साझा करने के लिए।
0: थैंक यू,
1: शुक्रिया।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, जहां हमारे संवाददाता आपको अपडेट करते हैं इस प्रसारण के माध्यम से, वहां हम भी आपके साथ 2 बजे का अपडेट साझा करेंगे। तो 2 बजे तक दर्शन अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। तो कुल मिला के 10,001 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 6,555, महिला 3,007, बालक 177, साधु 55, साध्वी 3, ट्रांसजेंडर 1, सुरक्षाकर्मी 203। तो कुल मिला के 10,001 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्रंशन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, 3 बजे का दर्शन अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे हम। तो कुल मिला के 10,398 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 6,829, महिला 3,112, बालक 182, साधु 57, साध्वी 3, ट्रांसजेंडर 2, सुरक्षा कर्मी 213। तो कुल मिला के 10,398 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। सभी यात्रियों से निवेदन है आपकी यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सुखद रहे। सफर के दौरान सभी नियमों का पालन करें, प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का सम्मान करें और अपने सामान का ध्यान रखें। शन शन के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, दर्शन अपडेट हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे आज 4 बजे तक का। तो कुल मिला के 11,099 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 7,214, महिला 3,362, बालक 212, साधु 63, साध्वी 3, ट्रांसजेंडर 2, सुरक्षाकर्मी 243। तो कुल मिला के 11,099 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। शनशन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोता आपको बता दें, मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार आज यानी 27 जुलाई 2026 यानी आज शाम तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और गरज चमक होने की संभावना है। शाम के बाद मौसम में सुधार हो सकता है। वहीं अगर बात करें 28 से 31 जुलाई कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना है। कुछ इलाकों में अचानक तेज़ बारिश हो सकती है। बारिश का ज़्यादा असर सुबह जल्दी सुबह और दोपहर के बाद से शाम के समय रहने की संभावना है। वहीं जम्मू के ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के कुछ दौर हो सकते हैं। कुछ इलाकों में तेज से बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। उधमपुर और आसपास के इलाकों में रात देर से सुबह तक और दोपहर के बाद शाम के समय बहुत तेज़ बारिश की संभावना है। बारिश का सबसे ज़्यादा असर 30 और 31 जुलाई को रह सकता है। 1 से 2 अगस्त जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक दो बार बारिश और गरज चमक हो सकती है। कुछ जगहों पर अचानक तेज़ बारिश भी हो सकती है। 3 से 4 अगस्त कई इलाकों में एक दो बार बारिश गरज चमक होने की संभावना है। जम्मू डिवीजन के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश या बहुत तेज़ अचानक बारिश हो सकती है। ये थी सूचना मौसम विभाग की तरफ से। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालथल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बता दें, उपराज्यपाल श्री मनोहर सिन्हा जी ने अपने ट्वीट में कहा, भगवान शिव की कृपा से पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अपनी पवित्र यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस समय तक 4,14,000 भक्तों ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं। मैं बाबा अमरनाथ को इस आशीर्वाद के लिए श्रद्धा से प्रणाम करता हूं और उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस यात्रा को सभी के लिए एक दिव्य और यादगार अनुभव बनाया।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, आइए आरती का आनंद लेते हैं।

धर्म प्रेमी बंधुओं, बाबा के इस पवित्र धाम में, पवित्र गुफा में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। MH1 चैनल के माध्यम से देश एवं विदेश में जो भी भक्तजन बाबा के इस दिव्य गुफा का दर्शन कर रहे हैं, पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, उन सभी भक्तजनों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी भक्तजनों के ऊपर भोले बाबा की विशेष कृपा है कि जो भोले बाबा के दिव्य दान से प्रातःकाल एवं सायंकाल की आरती का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

देवादिदेव महादेव संपूर्ण जगत के कण कण में विद्यमान है। कर्पूर गौरम, भगवान देवादिदेव कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो समस्त संसार के सारभूत हैं। भुजगेंद्रहारम, जिन्होंने अपने कंठ में अपने गले में सर्पों की माला धारण किए हुए हैं, जिन्होंने अपने गले में मुंड मालाएं धारण किए हुए हैं, ऐसे देवादिदेव भोले बाबा अमरनाथ स्वामी हम सब शिव भक्तों के ऊपर, हम सब भक्तजनों के ऊपर निरंतर माँ घोरा के साथ निरंतर हमारे हृदय में बात करें। तो इसी के साथ सभी भक्तजन आरती का आनंद लेंगे और विद्वान जनों के द्वारा आरती श्रवण करेंगे। बोलिए।

0: जय।
1: सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की दिव्य आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: भोले के गले में सरपा बिराजे,
1: भोले के गले में सरपा बिराजे,
0: सरपा बिराजे जी सरपा बिराजे,
1: सरपा बिराजे जी सरपा बिराजे।

0: अमृताभिषेकमस्तु अस्तु अमृताभिषेक। बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: विनाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के घनों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय हो,
0: नमः पार्वती पते, हर हर हर महादेव। शिव शंभो निरावलंबस्य ममावलंबं विपतिताशेष विभक्तं ब्रह्मदेय पापाचल पादशं प्रवर्तताम् भाति सदैव बं बं।

0: अभी भक्तजन आरती आपको गेट के बाहर मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान के।
1: श्रोताओं, आप बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे साजाद अहमद गुरकू, मंजूर अहमद नजार, मैं आपकी साथी पजमान फेरोज, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित रहेंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।
1: रनिया माना मोर कहनवा।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम, सीता, लक्ष्मण व भक्तगण स्नान, ध्यान, पूजन, भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी।

0: குந்தேந்தீவர சுந்தராவதி பலௌ விஜயான தாமாவுபௌ சோபாட்யௌ வரதன்வினௌ ஸ்ருதினுதௌ கோவிப்ரபிருந்த பிரியௌ மாயா மானுஷ ரூபிணௌ ரகுவரௌ சத்தர்ம வரமௌ ஹிதௌ சீதான்வேஷண தத்பரௌ பதிகதௌ பக்தி பிரதௌ தௌ ஹினா। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूह पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे।
1: भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: कुतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरहु बन स्वामी। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवताओं में से तो नहीं है, या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनोज अवतार।
3: वीरवर कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है। हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं, बस यही हमारी गाथा है। अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए।
1: स्वामी, मेरा आपसे परिचय पूछना तो न्याय संगत था। मैंने वर्षों बाद आपको देखा है, वो भी तपस्वी के वेश में। अपनी बानरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिरहु भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान।
3: हनुमान हनुमान,
1: मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी, मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है।
3: हनुमान हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ।
4: तात, आपके नेत्रों में अश्रुकण।
3: यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में ग्लानि मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो।
4: सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है।
3: पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
1: नाथ, सैल पर कपिपत रही सो सुग्रीव दास तब आई। तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए दीन जानी तेहि अभय करीजिए। सो सीता कर खोज करा इह जहां ता मरकट कोट पठा इह।
0: इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर अग्नि की साक्षी कर उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।
2: वानरराज, मेरे भाई महापराक्रमी राम हैं। हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। खर, दूषण, त्रिशरा और कबंध जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
3: देव, आप लोग चिंता न करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखे मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पट डारी।
5: वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव, अभी लो प्रभु।
3: ये लीजिए प्रभु,
5: वही हैं, सीता के ही वस्त्र हैं प्रभु।
3: आप चिंता न करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं।
5: मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो?
3: स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे सहन कर सकता था? बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला।
6: दुष्ट मायावी, ठहर, मैं तुझे तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा। सुग्रीव।
5: हाँ भैया।
6: तुम देख रहे हो, मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है। तुम मेघ पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है।
5: भैया, ये आप क्या कह रहे हैं?
6: मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा।
3: प्रभु, मैं वहां 1 मास तक रहा। तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा। मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा बना दिया।
5: चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं?
3: कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो यह था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रत्येक शत्रु के समान रोष था। रिपुसम मोही मारे से अति भारी, हरि लीने से सर्वसु अरिनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
7: सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उपरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है। सिद्धांत कहता है, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटी करत मिताई। अतः सखा सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो।

0: मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
1: देव, बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है। देखिए, वो दुंदुभी राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष हैं। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा।
0: तो लो, मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं।
1: आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे।
0: निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा।
1: बाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुख संपत्ति परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं।
0: ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ।
2: बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो।
3: आज इस सुग्रीव को क्या हो गया? कहीं भांग तो नहीं खा गया?
2: ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं।
4: स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए।
3: क्या है?
4: ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति, जिन्हें मिले वो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीमा, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।
3: भीरु प्रिय, राम समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तब भी मुझको परम पद प्राप्त होगा।
1: दुहाई है प्रभु, आपकी दुहाई है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है।
0: मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही ना मारे जाओ। लो, ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो।
5: की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याध की भांति मुझे मारा। मैं पहले सुग्रीव प्यारा, अब कुन कवन नाथ मैं मारा।
0: अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बने कछु पाप न हुई। मोढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना, मम भुजबल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
5: स्वामी, स्वामी, आपसे मैं चतुराई में नहीं जीत सकता। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा।
0: सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो।
5: नहीं नहीं कृपाने धार रही, मुनिगण जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते, वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते, और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा? सो नयन गोचर जा।

0: सुकुन नित नेति कहीं श्रुति गावही, जित पवन मन गो निरस करि मुन ध्यान कबूक पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही, अस कबन सट हटि काटि सुरतरु बारी करही बबूरही। अब नाथ करि करुणा विलो कहु, देहु जो वर मांगहु, जही जोनी जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुराग हु। प्रभु देवताओं और मनुष्यों के नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है। बल पराक्रम और विनय में मेरे ही समान है, इसकी बाह पकड़ कर आप इसे अपना दास बनाइए, इसे आश्रय दी देखिए।
1: तथास्तु।
2: स्वामी, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, पर आपने मेरी बात न मानी।
3: पिता, तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा?
1: देवी तारा, धैर्य से काम लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन्हीं पांच तत्वों से ये अधम शरीर रचा गया है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो?
2: प्रभु, मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो।
1: निश्चित देवी, सखा सुग्रीव, बाली तुम्हारे अग्रज थे, विधिवत इनका दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण, तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराजपद से सुशोभित करो।
4: रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए, सभी कार्य विधिवत हुए। तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया। अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।

0: आज आपका मन कुछ उद्विग्न लग रहा है।
1: प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्य में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं।
0: मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है।
1: तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन बोरा। उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर प्राण लेते हैं।

0: लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु
1: किंतु क्या तात, आप चुप क्यों हो गए?
0: लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा।
1: तात,
0: सुग्रीव हूं सुधी मोरी बिसारी, बाबा राजकुस पुर नारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड़ कह काली।
1: बहुत दिनों बाद आज धनुष पर बाण चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ ना हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूं।
0: वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण, केवल भय दिखाकर सखा सुग्रीव को यहां ले आओ।
2: जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं, ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है, वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाए।
1: कहां है सुग्रीव, उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा।
3: मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव, हम लोगों को अभिदान दें, हमारे अपराध को क्षमा करें।
1: डरो मत अंगद।
4: हनुमान, हनुमान।
5: आज्ञा महाराज।
4: देवी तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी को समझाओ, उनके क्रोध को शांत करो।
6: हम उन्हें अभिभवन में लेकर आते हैं महाराज। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान।
5: मेरा भी प्रणाम स्वीकारें देव, हमें आशीष दें।
1: मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है।
6: आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए।
5: मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव।
1: उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ।
5: हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है, मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है।
7: लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में बानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं।
1: ठीक है, आओ अब श्री राम जी के पास चले।
2: हर के चले सुग्रीव, तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आज्ञा करी आए जह रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही, आए बान रजूत, नाना बरन सकल दिसी देखिए की सुबरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा,
5: उसके बाद
4: शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरो, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है, यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो, इसके लिए 1 मास की अवधि है। जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा।
8: भगवान राम की जय! भगवान राम की जय! बाला राम सुग्रीव की जय! बाला राम सुग्रीव की जय! बाला राम सुग्रीव की जय!
4: सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मतिधीर सुजाना सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू सीता सुध पूछे सबकाहू मन क्रम वचन सो जतन विचारहु रामचंद्र कर काज सवार।
0: यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना।
2: हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेऊ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये वानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े।

0: अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ।
2: दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन पनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही कर देते। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा।
1: सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है, हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
3: आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं।
1: यहां कुशा बिछाकर थोड़ी देर विश्राम कर। जटायु का बड़ा भाई संपाती तो नहीं?
3: मेरा विचार है वही है।
4: आज सब ही कह पर जानकारा हूं, चले आहार बिन मर तब उन्हें मिल भरी उधर आहारा। आज दीन विधि एक ही बार।
2: अब तो साकार मृत्यु सामने आ खड़ी हुई है,
1: इससे निपट लेंगे। सोचने की क्या बात है,
2: वास्तव में किथराज जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता। ये परम भाग्यवान है जो भगवान राम की काज अपने प्राण त्याग कर परम धाम।
4: सुनो बंधु, मुझे समुद्र के तट तक ले चलो, मैं जटायु को दिलाने के लिए मैं तुम्हें सीता जी के बारे में बताऊं।

0: सुनो वानर वीरों, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार तेज को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं दम भी उड़ता ही चला गया। रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं घोर चीत्कार के साथ धरती पर गिरा।
1: फिर
0: चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था कि त्रेता युग में

0: भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो जाएंगे। तू उन्हें सीता दिखा देना। आज आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है।
1: सीता जी कहाँ है?
0: हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है। वहां रावण निडर होकर राज्य करता है। उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ, तुम नहीं। गीधी दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा, उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं। कायरता छोड़, लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा।
1: बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामना अवतार लिया था, तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
2: मैं समुद्र पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है।
1: तुम सब कुछ कर सकने में समर्थ हो, किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान, हनुमान, महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है।
2: हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो।
3: मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं।
4: जामवंत, मैं पूछूं तोई, उचित सिखावन तीन जहु मोई।
1: तुमने हम सबको उबार लिया है तात, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।